0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हां जी हां जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो। हां जी।

इंडिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, man. I'm Saiko Mirbai from Manipur. Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस.
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

AI है AI है, सब पता लग गया सर ऐसा लिरिक्स की है, मतलब दसो है जब से तू मेरी जिंदगी में आया पल कुछ खासा लगता है, तेरे बिना दिल मेरा अब तेरा लगता है। बड़ी गल सुन लिया है गल, नहीं चलो कुछ और सुन लेने हैं।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो
4: थोड़ी मोटी नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: रास्ता।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
4: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio 167 4 a.m.

0: हाँ भाई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.
4: Aaj pyar ki ho deal.
5: Deal bole to?
6: Heart heart.
7: Awa yaar sauda sauda.
6: Oho.
4: Dono deal kar seal.
6: Tight, tight, very tight.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

जरा सा बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: कोट माया सरमा है कई कोट परदेश भरमा है
1: जत जत लाभो तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट से जति जोगी कई कोट राज रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरखन पजाए
0: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दान विंदर सिर छत्र
0: सुमदरी अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
0: कई कोट के रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
0: कई कोट जाकिन प्रसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा
1: सब ते नेरा सब हुते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी
1: कई कोट जन मै जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
0: कई कोट बैठती खाए कई कोट खाले तक पाए
1: कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मह चिंत
0: जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
1: कई कोट दर्शन प्राप्त आस्तन को मिलियो प्रभ विनाश
0: कई कोट मा गए सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको है आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
0: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार कई ज्योत कीनो विस्तार
0: कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए ब्रह्म है समात
0: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास
0: कई कोट तत् के बेटे सदा निहारे इको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे
0: कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सहि समावे
1: अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
1: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: करन करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग
1: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
0: हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
1: प्रभावे मन नत पावे प्रभावे ता पाथर त्रावे
0: प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे
1: प्रभावे ता पथ तुधारे आप करे आपन बिचारे
0: दोहसरिया का स्वामी खिले विकसे अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे
0: हो मानक ते क्या होया वे जो तिस पावे सोई करावे
1: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे
0: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचे
1: परमे भूला देह दिसतावे निमुख माहे चार कुंट फिरावे
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले
1: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दिष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दस पुलटावे
1: जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा नागन जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बडाई
0: इसका बल नाई इस हाथ कर्म करम सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो
0: कबहू ऊंच नीच में बसे कबू शोक हर खरंग हसे
1: कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू उब काश पयाल
0: कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिलावन हार
1: कबहू नित करे बो पांत कबहू सोई रहे दिन रात
0: कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रवाल
1: कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पे खारी नीच का साजा
0: कबहू अब कीर्त में आवे कबहू भला भला कहावे
1: ज्यो प्रभु राखे तिवि रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोहन धारी लावे ध्यान
1: कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहू कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भर में भरमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रभु भावे तिवै नचावे
0: ज्यो तिस भावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए
1: कबहू साध संगत ए हो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम ते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग
0: ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समान
1: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
1: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत सो हो वित बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बो जोन भरमावे
1: अन भूम गा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंता होए कर गुर बावे तृण समान कछ संग न जावे
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे ना बदे आप अहंकारी तरमराए तिस करे खुआ ਬਿਹਾਰੀ
1: ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ

0: ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੂਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਰੇ ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰ
0: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ
1: ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮਨੀ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕੋ ਕੈਸੈ ਗਵੈ
0: ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ
1: ਸਰਬ ਕਿਰਿਆ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ
0: ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾ ਛੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
1: ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰ
0: ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ
1: ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੁਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਲੈ ਦੇ ਸਜਾਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੂਟੈ
1: ਐਸ ਕਟੇਲਾ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ
0: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ
1: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਤ ਬਿਤੈ ਸਭ ਕਾਜੈ
0: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ
1: ਜੈਸੀ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਪੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਆਪੈ ਏਕ ਆਪੈ ਅਨੇਕ
0: ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
1: ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ
0: ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਾ ਛੁਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
1: ਤੇ ਬਿਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ
0: ਆਪਣੇ ਚਿਲੇ ਤਬ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ
1: ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ
1: ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀ ਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ
0: ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅਨੂਪ
1: ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਵਰਨ ਵਖਾਣੀ
0: ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ
1: ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਬਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੁਭਾ ਤੇ ਹੀ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰਖੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ
1: ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਬੀਤਰੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗਜੋਂ ਲਵੈ
1: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਬ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਕਤ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ
0: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ
0: ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿੰਟਿਕ ਨਾ ਪਾਈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਹਰ ਦੀਨ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ
1: ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਿਮਿਤ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੋ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਲੋਥਾ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਆਪਣ ਬੀਜਾ ਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਓ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜੋ ਜਲ ਬਿਹੋਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜੋ ਪਾਵਕ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੈ ਕੀਲਾ ਜੋ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੀ ਬਹੀਲਾ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ
0: ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵ ਆਈਐ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੇ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਚਲੈ ਨਰਾਸਾ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ
1: ਪਿਆ ਕਿਰਤਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
0: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਸਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ
0: ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ
1: ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ
0: ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਧੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ
0: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਨ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਰ
0: ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਢ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
0: ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
0: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੇ ਭਾਵ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
0: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ
1: ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ गाहे
0: राम नाम जो कर है बीचार से धनवंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछान इतुत की हो सूझी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने आ नानक तिन निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपन आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सा संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्यो हर जन नहत
0: आंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागे दुख
1: जिसको हर पर मन चित आवे ऐसो सन सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस पर अपना कृपा कर ऐसो सेव कहो किसते डरे
1: जैसा सत तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
1: जब देखो ता सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: नह किछ जन्म नह किछ मरे अपन चलित आप ही करे
1: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट
0: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
1: अविनाशी नाही किछ खंड तारन धार रहो ब्रह्मांड
0: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल लय कृपाल गुर का सजो पै निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करह बड़ भाग
1: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
0: जो किछ करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग
1: सह सुबह होवे सो होए करने हार पछाण सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिसते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
0: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम 8-14 श्लोक
0: सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिया नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभा पे आप
0: आपन की आकछु न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
1: तनवंता होए क्या को गर्व है जा सब की तिसका दिया दर्व है
0: अतसूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे
1: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गावार
0: जिस गुर प्रसाद टूटे हां रोग नानक सो जन सदा अरोग
1: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
0: ज्यो पाखाण नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्तार है
1: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
1: दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्या तू तसै चितार
0: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरै अजान
1: कौन बसताई तेरे संग लपट रहो रस डूबी पतंग
0: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वकर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
0: तजब मान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतोल
1: लाद खेप संतै संचाल अवर त्या विखिया जंजाल
0: धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
1: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
0: चरण साधके धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा बड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए
1: अनक विघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: कोट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया
1: मृतो को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार
0: सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे
1: सब तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एहे करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की परती तिस जन आवे हर प्रवचीत
1: भगत पग सुनिए तिहलोए जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
1: साची दिस सच आयाकार सच वर्ती साचा पासार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम 8-15 श्लोक
0: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: अविनाशी ब्रह्मन में राख मान की तू प्रीत त्याग
0: तिसते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: सात तरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
0: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
1: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै
1: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
0: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
1: ਸੂਤ ਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
0: ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
0: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਕਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਤਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ
0: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨਮਾਹੇ ਪੂਰਹਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਤ ਕਰ ਬੰਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ
0: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਸਗਲੈ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਾ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਨ
1: ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੈ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
0: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਣੀ
0: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬਜਾਏ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ
0: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
0: ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਸਵ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰ ਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮੀਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
0: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝੈ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
0: ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੇ ਗੁਲਾਗੀ
0: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 816 ਸਲੋਕ
0: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ
1: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ
0: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਨਤਾ
1: ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ
1: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
0: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ
1: ਬਸਤ ਮੈਂ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ
0: ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇ
1: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ
0: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
1: ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ
1: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ
1: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ
0: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਖੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
1: ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਖੈ ਪਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ
1: ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤਬੋ ਪਾਤ ਤਿਸ ਕੈ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੈ ਜਾਤ
0: ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ
1: ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ
0: ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ
1: ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਇਆ
0: ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਸੰਗ
1: ਨਾਮ ਰਸ ਚੋ ਜੰਤਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਬਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ
1: ਲੋ ਜਾਚੇ ਵਾਦਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ
0: ਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ
1: ਜੋ ਹੋ ਆਹੋ ਵਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ
0: ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ
1: ਹਾਟ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੈ
0: ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ
1: ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ
0: ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ
1: ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ
0: ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 817 ਸਲੋਕ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ
0: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ
0: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
1: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਕਰੇ नानक सो सेवक गुर की मत ले।
1: विश्व विश्व गुर का मन मान है, सो सेवक परमेश्वर की गत जान है।
0: सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ।
1: सर्वनदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता।
0: ब्रह्म है जन, जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम।
1: सहर से अन पलया न जाइए, नानक ऐसा गुरु भागी पाई है।
0: सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत।
1: संग्राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दरगह गवै।
0: सुनकर बचन करन आगाने, मन संतोखा तुम पतिया ने।
1: पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र, अमृत दिष्ट पेखे होए संत।
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए।
1: जे बाए कुस्तत अनेक, सतपुरुष पूर्ण बबे।
0: काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभु निर्बानी।
1: निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई।
0: अनक भगत बंदन नित कर है, चरण कमल हृदय स्मर है।
1: सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।
0: एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए।
1: प्रता नाही कदे विनाश, जाके मन पटे गुणतास।
0: आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदे सेवक को दे।
1: मोह माया के संग न लेप, मन में राख है हर हर एक।
0: अंधकार दीपक परगासे, नानक पर मोह दुख तहते नासे।
1: तब्त माहे ठंड वरताई, आनंद पया दुख नाठे पाई।
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे।
1: पाव चुका निर्भय होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे।
0: जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी।
1: चित पाई चूके भव गवन, सुन नानक हर हाज सरवन।
0: निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही।
1: अपने चित बाबा बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।
0: हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए।
1: पोत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग।
0: रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी।
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ अठारह श्लोक,
0: साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली छार। हर हर नाम कमाव ना नानक हो तन सार। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
1: संजना मिल करो विचार। एक सिमर नाम आधार,
0: अवरो पासा मीत बिसार हो। चरण कमल रिद मैं उरतार हो।
1: करम कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर रथ।
0: एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत।
1: एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे।
0: जिस तन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पाव है।
1: जिस को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत।
0: जे शोभा को कर है भली करनी, सा शोभा भज हर की शरणी।
1: अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवख दलाए।
0: सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगै परवान।
1: मन पर बोधो हर के नाए, दर्द स्तावत आवै ठाए।
0: ताको बिघन लागै कोए, जाके हृदय बसै हर सोए।
1: कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
0: भाव बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास।
1: सित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जमफासी।
0: तत विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा।
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव।
0: यों रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार।
1: अन को पावन छूटन हारे, सिमर शास्त्र वेद विचारे।
0: हर की भगत करू मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए।
1: संग न चालस तेरे धना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना।
0: सुत मीत कुटांबर बन तैन ते, कहो हो तुम कवन सनाथा।
1: राज रंग माया विस्थार, इन ते कहो हो कवन छुटकार।
0: अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी।
1: जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना।
0: गुर की मातू लिहे आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने।
1: हर की पद करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत।
0: चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे।
1: आप जप हो अवरै नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पाओ।
0: सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ।
1: गुण गावत त्रि उतर समैल, बिनस जाए हो मैं बिख फैल।
0: होहे अचिंत बसै सुख नाल, सांस ग्रासर नाम संभाल।
1: छाड़ सियान सगली मना, साध संग पावे सजतना।
0: हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार।
1: सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्त कलेख।
0: एको जापे को सालाहे, एक सिमर एको मन आहे।
1: एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत।
0: एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरहे ओ प्राभ्याप।
1: अनक विस्तार एक ते भय, एक अराध पराचित गए।
0: मंतन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता।
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ उन्नीस श्लोक,
0: फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचै प्रभदान। कर कृपा दिवो हर नाम,
0: साध जना की मांगो तूर। पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ। सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ।
0: चरण कमल सो लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत।
1: एक ओट एक आधार, नानक मांगै ना प्रभ सार।
0: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोए।
1: जिन चख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरख नहीं डोला ने।
0: सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग।
1: करै शरण आन सब त्याग, त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
0: बड़पागी जपया प्रसोए नानक नामरते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत ले
0: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक की नो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
0: पिछ पुनी शरदासा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
1: जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे की आ जाने
1: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है
1: सो क्यों बिसरै जे बिकते गाड है जन्म जन्म का टूटा गाड है
0: गुरपुर है ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो हुकाम आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो
1: भग पाए त्रिये संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
1: सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुण तास
0: उपजी प्रीत प्रेम राष्ट्राओ मन तन अंतर एही सुआओ
1: नेत्रो पेक दरस सुख होए मन बिकसै साधु चरण तोए
0: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
1: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
0: ताकी उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए
1: प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन भाई
0: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
1: पली सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत
0: सार संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
1: सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवीं श्लोक
0: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जब अकार कुछ न दृष्टि ताप पुण तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वरण चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
0: जब अपन आप पार ब्रह्म तम हो कहां किस होवत परम
1: अपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रा केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गानी
1: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
0: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
1: अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
1: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भू कौन तृप्तावै
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार
1: जापनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
0: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेद कतेव कहां कोचीन
1: जब आपने आप उतारे तो सगन अपसगन कहां बिचारे
0: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गज जानो आप
0: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
1: आपस को आपे आदेश तिहु गुण का नाही प्रवेश
0: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जह आपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
1: जह आप रचियो पर पंच आकार तिहु गुण में कीनो विस्तार
0: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत
1: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखिया
1: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है
0: जह अवगत भक्त है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
1: तुहु पाक का आपै धनी उनकी शोभा उन्हूं बनी
0: आप है कौत करै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
1: जिस भावै तुस आपन ना लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै
0: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए
1: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जी जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंतर सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरे एक निरंजन राए
1: जी की जुग जा कह सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत् पाले जी अनबो पात जो जो रचियो सुत सह त्यार
0: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
0: जन लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेवो को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजे गुर के पैर
0: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत वचन हर की गुण गाओ प्रांत नुनकाए हे सुआओ
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंदीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते भौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रख न हार ते आए
0: निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भलजना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिगरी एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत पव का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिसन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहू डूलै
1: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइए गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी जो धार हे ओ स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क़ माने करन करावन हर प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्थार तिस पावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगा जिस आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सु आपे कह
0: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता लय समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भग जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्या गो तरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
1: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलिक लाल एह रतन
0: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरै तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न भए गुरदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
1: आल जंजाल बिकार तेरे ते राम नाम सुरसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मध सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
0: ते फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
1: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत
1: मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै
0: निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से बै परम साध नाम निर्मलता के करम
0: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबी

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोत महाबल सू तिन में राम रहया भरपूर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Thank

0: शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पे बहुत काम करने की जरूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूं जिस रिश्ते में मैं हूं, वो मैं खुद कर सकता हूं। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जानी शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह के अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता है या बॉस के साथ का रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहां हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहां ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करें तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से लेट अस क्रिएट दैट पिक्चर इन आवर कॉन्शियस।
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने, जब तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग, बट इट मस्ट बी, मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: यानी कि मैं ठीक।
1: दैट कुड बी द ओनली लॉजिक, अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर, और दूसरा इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू, लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: सो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। सो दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि समवेयर इट डिपेंड्स ऑन विच कलर स्पेक्स आई एम वेयरिंग। आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कम्प्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत इजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठकर वर्क करके अपनी परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive negative energy and then I will stay in pain. And ye pura process maine create kiya. अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा. रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हर स्टेप पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ. स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं फिर भी एक विशेषता तो होगी. अच्छा इफ यू आर फाइंडिंग समवन होगा नहीं लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ. दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माय कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है. बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: इन दैट केस मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: एंड दैट्स वाई सेम दुनिया. And someone will say the world is so beautiful, and someone will say the world is a big mess.
0: Actually, yes, you know, अगर हम deep में जाएं, जिसको बुराई देखने की आदत है, जो बुराई करता है, वो सबकी ही बुराई कर रहा होता है. कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता उन्हें.
1: तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे ही देखने का नजरिया. और इसीलिए परमात्मा ने आकर हमें कहा कि स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना. हम अपने एटीट्यूड को अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग वो वैसे के वैसे होते हैं. दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस. इट्स हियर. सो इट इज वेरी इजी टू लुक आउटसाइड. लिटिल चैलेंजिंग टू लुक इनसाइड. लेकिन सोल्यूशन यही पर है. तो अगर कोई अपने ऊपर सचमुच में काम करके रिजल्ट पाना चाहता है तो उसको फिर काम तो वहीं करना पड़ेगा जहां काम हो सकता है. आप ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें. यू वर्क ऑन द रिलेशनशिप देयर एंड फिर आपको रिजल्ट नहीं मिले फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते जाएं और फिर आप और एक दूसरे से कटते जाएं. वी आर गेटिंग नोवेयर.
0: एक्चुअली वेरी ट्रू. यू नो हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूंगी और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ. मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचती. आप देखो हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या. कम्युनिकेशन. रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ. रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ. रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूंगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूंगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो डिफिकल्ट.
0: नो नो नो यस एक्चुअली
1: सी
0: हाँ
1: यू जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो. आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस. एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफ कोर्स अगर वेरी ट्रू. अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है कोई देख के मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू.
1: आई फील गुड. या I feel good. Now it is possible ki I don't think very good about you. It is possible ki I don't think very good about you. Ya mera vyavahar bhi shayad aapke sath utna acha nahi hai. Fir bhi aapko kaisa feel karna hai wo fir bhi aapke hath mein hai. So let's start just working on myself. Take the control back. I am going to keep the control in my hand. बट अपने पर फोकस नहीं होगा तो ध्यान ज्यादा क्या होगा. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. वो मेरे बारे में क्या बोलता है. वो मेरे बारे में क्या सोचता है. एंड देन आई कंज्यूम दैट एनर्जी. वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे. वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे. और ये सब कंज्यूम करके वो अच्छे नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे नहीं है, एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है?
0: मुझे, क्योंकि नहीं और वो नहीं लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो उनके बारे में बुरा सोचूंगे.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन,
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते.
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स व्हाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ, फोकस अभी भी मैं ही था.
1: मैं ही था लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू. बट नाउ आई रियलाइज माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग अप्रिशिएट करेंगे, दो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे फ्लक्चुएट होने वाली है, देन मेरे हाथ में क्या है. लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि क्रिएट हम करने वाले हैं, आई कैन चूज वॉट टू क्रिएट एंड बी वेरी केयरफुल. सारा दिन आई एम क्रिएटिंग, जस्ट दैट मच अवेयरनेस इज नीडेड सारा दिन कि आई एम क्रिएटिंग. तो जर्नी कैसे हो जाएगी? वेरी सिंपल. द फर्स्ट पॉइंट था कि वेयर डज द रिलेशनशिप गेट क्रिएटेड, अपनी कॉन्शियसनेस में. दूसरा पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो हमने कई बार रिपीट किया है लेकिन वो फंडामेंटल है, एंड दैट इज हु हर्ट्स हु.
0: आई हर्ट माइसेल्फ, ये तो एक पूरा स्टेटमेंट ऐसी है.
1: ये लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है, उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
0: आपने हर्ट किया,
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट्स हु, आई हर्ट माई सेल्फ. दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे, तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूं, भी कोई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी.
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊं कि थी, इट वॉज नॉट लाइक दिस,
1: दैट्स ओके, दैट इज फाइन. लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है. फिजिकली कोई मुझे मार सकता है, लेकिन यहां तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता. यहां ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहां मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू. लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? आपको पता है, यहां हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफी लिस्ट होती है,
0: काफी बड़ी होती है.
1: और उस लिस्ट को हमने काफी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टूडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, व्हाट इज आई से, बट हुज क्रिएटिंग द पेन? उन्होंने जो करना था सो किया. राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. इम्पोर्टेंट इज दर्द फिर भी कौन क्रिएट कर रहा है, कब तक? सी, बाहर आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट इन माय कंट्रोल. यू नो, यू आर नॉट. अगर आज आप मेरे साथ प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हो, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल. आज आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के मेरा लाखों रुपए लेके चले गए, नॉट इन माय कंट्रोल. आज आप एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आप रिश्ता तोड़कर बाहर कहीं चले गए, नॉट इन माय कंट्रोल. लेकिन माय पेन,
0: इट इज इन माय कंट्रोल,
1: दैट्स आई एम क्रिएटिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. क्योंकि जहां सेल्फ पर मैनेज किया, तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा. अभी हम कहते हैं सिचुएशन इतनी बड़ी थी, दे कॉज्ड मी हर्ट. नो, देयर इज ओनली वन वर्ड देयर हु कॉजेज पेन टू मी, दैट्स माय सेल्फ. दे कैन डू थिंग्स, जो उनको करना है वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन दर्द फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मेनी पीपल विल से लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया किया, फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया.
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया. यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया.
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. Yes, very true. You know,
1: it's okay if I am in pain. Let me work, and मैं उसको heal करूंगी. लेकिन मैं उसको heal तभी कर पाऊंगी जब I realize कि ये दर्द मैं create कर रही हूँ. हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते हैं.
0: मैंने उसी ने किया,
1: उसने किया तो वो आकर उसको ठीक करेगा.
0: जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, कहते हैं ना हर बार.
1: तो अब किसने दर्द दिया, हमें ही दवा देनी है ना. That is the point. We are not saying कि हाँ दर्द होता है, कुछ बात ऐसी होती
0: है. What happens? We keep on waiting that that person will come and apologize or things like that, and then things will, and, but things will never become same.
1: Yeah.
0: Even if that person comes, और वो माफी मांग के मुझे हील करने की कोशिश करता है, मैं क्या हील होंगी? मैंने मुझे वो पूरा टाइम गुजारा है, मैं उसको कह के मैं न उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी,
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है. अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते में? दर्द ही है. तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए. हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माय लाइफ, एंड देन डिलीट डिलीट डिलीट,
0: वाइप ऑफ कंप्लीटली एक्चुअली,
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ. वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे. Maybe not immediately.
0: But I think that person will go away.
1: Person will go away. That is fundamental. First, let the person go away. फिर तो pain धीरे धीरे जल्दी खत्म हो जाएगा. क्योंकि मैं creator हूँ तो मुझे finish करना easy है. लेकिन आप creator हैं.
0: तो फिर वो तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक, जब तक उसके साथ वैसा नहीं होगा तब तक नहीं. You know, like so many things we have.
1: Yeah. So, एक एक को लेते जाओ. Situation को rewind करना चाहते हो एक दिन के लिए कर लो. रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहाँ था. डिवोर्स बाहर था, दर्द यहाँ था. बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहाँ था. हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है. आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ.
0: बिकॉज
1: वी कैन क्राई राइट हियर.
0: यह आई कैन ऑफ कोर्स.
1: सो वेयर इज द पर्सन? वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, बट वी कैन क्राई राइट हियर.
0: बिकॉज यस, यू नो, समवेयर डीप विद इन आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट ही इज द ओनली वन हु कैन हील, शी इज द ओनली वन हु कैन कम चेंज द सिचुएशन और डू समथिंग.
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: भी नहीं, और वो कभी भी नहीं आने वाला.
1: एंड फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा.
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन,
1: जस्ट लेट गो. बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर रखा
0: है? सालों पुराने होंगे. मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल रिमेम्बर
1: ऑल द पीपल देयर.
0: लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच, लेकिन वो उनकी इमेज है.
1: वो फिर भी आपके घर में रहते हैं. लेकिन यहाँ
0: घर पर रहते हैं और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे, तब तक वो रहेंगे.
1: नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को खत्म करना शुरू कर देंगे. अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ आई गेट हील्ड, तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
0: हाँ, बिल्कुल परफेक्ट.
1: एंड रिलेशनशिप
0: आपके साथ, मुझे वो खत्म हो जाएगा ना. आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन,
1: आपके ऊपर जो ब्लेम था.
0: हाँ,
1: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा. तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. आई हैव टू ओनली फॉरगिव माई सेल्फ. एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन. मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ. सो सिमिलरली इफ आई सी यू इन पेन
0: बिकॉज ऑफ मी,
1: एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं,

0: मुझे सिर्फ अपने को हील करना है, दूसरा जैसा है वैसा ही है, लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं, करने दो, लेकिन वो तो मुझे अब्यूज करते हैं, ये करते हैं, करने दो. व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगी दूसरी तरफ. लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता, फिर दूसरी साइड भी जाता, तो दर्द की फ्रीक्वेंसी
1: फील सो गुड. मैं बात करते करते ही आई कैन सी सो मेनी रिलेशनशिप्स बिकमिंग मच बेटर. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बाप बेटे का रिलेशनशिप, यू नो, कहीं एक जो एक कहा जाता था, एक चुप कर ले और दूसरा. It can
0: Absolutely.
1: happen. It happens.
0: And no one can hurt me. I met a brother, and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी, because कुछ हुआ था, past incident. And फिर वो program के end पर आए और उन्होंने कहा कि my mother is in lot of pain and I am in lot of pain and अब मेरे father नहीं रहे and my mother is alone and you know whatever. I said आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते, and you know everything will become okay. And he says नहीं, but आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया. I said लेकिन उन्होंने जो किया सो किया, हम अब क्या कर रहे हैं. आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले आपको मिल रहा है, फिर आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा. वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द औरों में भी जाता है. टू फिनिश दिस, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम, गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड. ही डिड इट आफ्टर द प्रोग्राम, ही वेंट देयर, नेक्स्ट डे ही केम फॉर अनदर प्रोग्राम. चलिए, तो बहुत ईजी था, क्योंकि होता तो बहुत ईजी है ना, बट हमें टाइम लगता है. दैट्स ओके, That is my journey. I can take my time.
1: Actually, जिस दिन ये realize हो गया कि वो कारण है ही नहीं मेरी pain.
0: मैं हूँ और वो मेरे हाथ में है, अब मुझे कितनी जल्दी उसको finish करना.
1: तो ठीक है, फिर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ. मेरे को 10 दिन चाहिए, मुझे 1 दिन चाहिए, मुझे 100 दिन चाहिए, मुझे 1 second चाहिए.
0: Whatever. That's my choice. But at least the power
1: is in my hand now.
0: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूँ तब ठीक कर सकती हूँ. पहले आई वॉज अ विक्टिम, तो मैं वेट कर रही थी, और फिर मुझे सारे रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे. सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम, कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है.
1: मुझे कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते हैं.
0: बिकम्स वेरी वेरी इजी. So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं, तो एक बार मैंने label लगा दिया, कनुप्रिया ऐसी है, लगा दिया अब आपके ऊपर label. अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस लेबल के अंदर
1: एक एक इंसिडेंट
0: बैगेज भरते जाते हूँ, भरते जाते. उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला,
1: देखा ये जस्टिफाई हुआ है, ये पुख्ता हो गई मेरी बात, ये लेबल ठीक हो गया.
0: तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ, एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़कर रखेंगे उतना वो बैगेज
1: भारी होता
0: जाएगा. एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज.
1: तो मुझे ले डूबेगा ना वो, भारी होगा कि मैं डूब जाऊँ.
0: एब्सोल्युटली. तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का, तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें. लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था. इज इट पॉसिबल कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करो, उसको हल्का करो, क्योंकि वो निकालने से हु इज गोइंग टू फील बेटर.
1: आई
0: विल बी मोर अबाउट यू नो होल्डिंग थिंग्स अबाउट अदर पीपल. तो इफ आई कीप होल्डिंग दोज थिंग्स, यहाँ बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा. तो बहुत ईजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे, यहाँ ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, स्टॉप, नो आई डोंट नीड दिस, दिस इज अननेसेसरी वेट, आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट. तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा?
1: लाइट.
0: आई विल फील वेरी वेरी लाइट. तो बैगेज जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो, इसको हल्का करो. एंड बैगेज इज ऑलवेज अबाउट
1: अदर्स.
0: जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें.

0: कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहां तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है।
1: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है।
0: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा, 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया। वो तो वही है, तो वाई है, अब सफर किसको करना पड़ेगा? मी। वाई? जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
1: सो मच बैगेज।
0: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है? हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट। नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है।
1: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
0: सही है।
1: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
0: जजमेंट हो,
1: हाँ वही जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग यू नो, कि जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज ही अच्छी नहीं है। यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस।
0: माई डिसलाइक एंड जजमेंट, ये दो डिफरेंट चीज है।
1: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड।
0: इट्स बैड, या इट मे बी गुड फॉर देम।
1: इनफैक्ट इट्स अमेजिंग यू नो, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है। थैंक यू सो मच सीता शिवानी। हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाए, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक निगत ब्रह्मा कुमार इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Thank you.